0: अरे हम तो गिर पड़े।
1: सैन्य समुदाय मिलाए भरी ऑन एयर एप मां स्मार्ट स्पीकर मां बन्न होस प्ले बीएफबीएस यू बीएफबीएस गोठा रेडियो हो।